0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
2: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Your drive-along companion.
5: Dulux दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
6: Dulux, Dulux, Dulux.
7: एक दो तीन येलो. एक दो तीन येलो.
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैज कैश.
7: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
9: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89. Trending today.
3: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
4: City FM 89.
5: We're playing your song.
6: This show is brought to you by Jazz
2: City FM 89.
7: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज हियर, इट इज नाउ, एंड विद लीडरशिप comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: 89.
2: We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
6: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
7: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
6: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
8: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
9: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
10: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
11: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
12: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार. क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
13: Climate change is not a distant threat. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress, it should help protect the future. OGDC, carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan, supported by OGDC.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Restaurant business में हर second matter करता है. Customers quality के साथ discounts भी चाहते हैं. Business करना आसान नहीं, लेकिन business के लिए bank account reliable होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट्स फैसिलिटी, एटीएम्स एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
6: City FM 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.

0: पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
1: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जस्ट कैश
0: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो
2: City FM 89.
3: We're playing your song.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
5: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
6: A new era begins.
7: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: Trending today.
6: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
4: City FM 89.
7: You got me going crazy.
8: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
9: Ye kya hai, bhai?
10: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
11: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
12: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट
13: हाँ भाई 50% कैन यू बिलीव इट
12: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk
14: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
5: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-stop hits.
15: No matter what, you got.

0: 89.9 यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट
1: हाँ भाई 50% कैन यू बिलीव इट
0: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स
2: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk
3: एक दो तीन येलो
4: ये क्या है भाई

0: तो ये लो बाय जस्ट कैश।
1: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
2: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
3: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट?
2: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
4: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
5: City FM 89. We're playing your song.
6: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
7: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
8: A new era begins.
9: 89. We're playing your song.
10: Have you saved our WhatsApp number yet?
11: 03142-898989.
10: Get in touch over WhatsApp.
12: City FM 89.
13: You got me going crazy.
14: You're listening to
15: Nonstop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
6: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle.
7: Brought to you by Dettol.
8: City FM, we're playing your song.
9: You're listening to
10: Non-stop hits.
11: No talk. Just you and the music.
12: Back to back starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: पीडियाश्योर से आईवीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
6: सिटी एफएम 89, योर ड्राइव अलोंग कंपेनियन। यू आर लिसनिंग टू
7: नॉन स्टॉप हिट्स।
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
7: City FM 89.
8: You got me going crazy.
9: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया.
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है. इसमें आपकी कोई गलती नहीं.
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
12: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
13: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
12: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
14: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
15: The first time at the disco. Holiday with friends. Retro cinema.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
3: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
2: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
4: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
5: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं, इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
1: सिटी 89,
6: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: सनलाइट एक्सपोजर विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग हेल्प्स टू रेगुलेट योर स्लीप वेक साइकिल.
8: Brought to you by Dettol.
9: City FM 89.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
5: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
4: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
6: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
7: City FM 89.
8: When I grow up, I want to be strong.
9: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
8: I want to learn big things.
9: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
8: I want to be the fastest.
9: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
8: I want to grow up like everyone else.
9: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
10: Nurture today, strengthen tomorrow.
9: Act, a Dawn Media Initiative.
7: Don't adjust your dial.
2: City FM 89.
7: You're listening to
11: Non-Stop Hits.
12: No talk.
13: Just you
12: and the music.
13: Back to back.
12: Stops now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
7: City FM 89.
4: We're playing your song.
6: Trending today.
8: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
4: City FM 89, we're playing the song.
9: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
10: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
11: Ye kya hai bhai?
10: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
12: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
13: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट
14: हाँ भाई 50% कैन यू बिलीव इट
13: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स
15: For online visit, www.bata.com.pk
16: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
17: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज

0: कैश पर ये लो से पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
1: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जैस कैश
0: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
3: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
2: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
4: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing
5: the song. This show is brought to you by Bank Al Habib.
3: City FM 89.
6: You got me going crazy.
7: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म नहीं तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive, and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार. क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
11: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth, ताकि ये grow करे 50% faster.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
4: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
5: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
6: ये क्या है भाई?
5: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
0: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
5: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
8: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क। इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज।

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
1: City FM 89.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
6: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
7: ये क्या है भाई
8: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
1: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैज कैश
8: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
9: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
10: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट्स फैसिलिटी एटीएम्स एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
1: City FM 89,
2: your drive along companion.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
4: City FM 89, we're playing the song.
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
6: Ek duni do do duni chaar sahi intikhab ke inamat dhai hazaar.
7: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
8: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
9: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
10: पीडियाश्योर से आईवीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
4: 89.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
5: City FM 89. We're playing your song.
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
7: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
8: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth taaki ye grow kare 50% faster.
9: Restaurant business mein har second matter karta hai. Customers quality ke saath discounts bhi chahte hain. Business karna aasan nahi lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट्स फैसिलिटी एटीएम्स एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता Barosega.
10: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
11: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
3: City FM 89
4: sounds different.
12: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89, we're playing your song.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
1: City FM 89.
6: Trending today.
7: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy!
8: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
9: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
10: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
11: 1 2 3 येलो 1 2 3 येलो
12: ये क्या है भाई
13: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
14: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैज कैश
13: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
15: Pediasure से आइलीन को मिलता है complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth ताकि ये grow करे 50% faster.

0: Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: Maal taiyar hai, truck khada hai, mazdoor khade hain. Bas ek cheez ka intezar hai. Payment. Karobar chalane ke liye sirf saman nahi, reliable banking bhi chahiye hoti hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
4: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
5: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
7: ये क्या है भाई?
6: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो, येलो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
9: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show was brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Coming up next.
3: Future Sounds.
5: City FM 89. We're playing the song.
2: Trending today.
6: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
5: City FM 89.
7: You got me going crazy.
1: This show was brought to you by Bank Al Habib.
2: City FM 89.
8: 1, 2, 3, yellow. 1, 2, 3, yellow.
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
8: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
11: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
12: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
13: Follow us at City FM 89 on TikTok.
14: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
15: We are
1: City FM 89.
15: Future Sounds.
16: New tunes, hot beats. Where your next favorite track finds you.

0: support to your road rage.
1: City FM 89.
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
4: Dulux, Dulux, Dulux.
5: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
6: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
9: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: CDFM 89,
11: your drive along companion.
12: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
13: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
14: A new era begins.
15: You're listening to CDFM 89.
16: We're playing your song.
1: You're listening to
17: Future Sounds.
16: Future Songs.
18: Vibe with us, your music.
19: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: I want to be strong.
6: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
5: I want to learn big things.
6: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
5: I want to be the fastest.
6: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
5: I want to grow up like everyone else.
6: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
7: Nurture today, strengthen tomorrow.
6: Act, a Dawn Media Initiative.
8: CFM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.
11: Stay fresh, stay lit.
12: New music drops right here.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: You got me going crazy.
6: Trending today.
7: Action star Henry Cavill and comedy heavyweight Kevin Hart are joining forces for a brand new, currently untitled spy comedy headed to Netflix. Release dates and a formal title for the streaming exclusive have yet to be announced.
1: City FM 89.
8: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
9: ये क्या है भाई
10: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
11: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
10: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो
7: Sunlight exposure within 30 minutes of waking helps to regulate your sleep-wake cycle.
3: Brought to you by Dettol.
12: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
13: एक्सपोज योरसेल्फ टू अ वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
14: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
15: We're playing your song.
1: You're listening to
16: Future Sounds.
17: Future Sounds.
18: Discover 5 new tracks, fresh drops, and the artists you need on your playlist.
19: Stay ahead of the vibe.
11: Future.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: 89.
9: We're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.